बल दा हुर करने का चल रा व्यंशन योगे बल जे है इमहसं बल बल दा पाकता है इच बेटी